0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढ़ाई हो बढ़ाई लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: यो कृष्णसार FM
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
1: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरपिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
2: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081531366 र 98085549451।
3: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
5: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
6: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई, कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई,
5: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी, खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई,
6: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई, व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी,
5: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई, कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई, एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी व सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
6: थप आवश्यक सरसल्लाह व जानकारी के लाग लगभग संघे व प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय व स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा।
5: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग व तालिम केन्द्र खजुरा बाँके।

0: California. Extreme energy drink.
1: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
2: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
1: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
2: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
1: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
2: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
1: सम्पर्क नम्बर 081-535-717।
3: आज यहाँ कहाँ भटका थियो?
4: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
3: परेशान हो कोई बात नहीं है। प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेर के आम के बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेर के आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
4: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
3: संपर्क नंबर है 98487916।
5: ए रुक रुक रुक,
6: के भयो, किन कराएको यस्तो?
5: दाई यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे।
7: के एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
6: हो र?
5: हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
8: ओहो, आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
1: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन, बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
2: नेपालगञ्जको बिपी चोकमा अवस्थित जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीभीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
1: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
2: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570।
9: सूचना स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।
10: विश्व थाइराइड दिवसको उपलक्ष्यमा वरिष्ठ फिजिसियन एवं एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर अल्ताबन राईद्वारा थाइराइड सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श सेवा हुन गइरहेको जानकारी गराइन्छ।
9: हजुर, थाइराइड सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श, विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा सम्पूर्ण सेवाहरू मात्र ₹500।
10: डाक्टर अल्ताबन राई, MD इन्टरनल मेडिसिन, TU एन्डोक्राइनोलोजी, दिल्ली। वरिष्ठ फिजिसियन एवं एन्डोक्राइनोलोजिस्ट, NMC नम्बर 11504।
9: सम्पर्क ठेगाना सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, बिपी चोक नेपालगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 081-531-860, 081-531-861 र मोबाइल नम्बर 98-584-861। मिति 2083 जेठ 23 गते, समय बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, बिपी चोक नेपालगञ्जमा आजै नाम दर्ता गरी ढुक्क हुनुहोस्। सम्पूर्ण सेवाहरू मात्र 500 लिन नभुल्नुहोला।
11: यो कृष्ण सार FM
12: 94 MHz, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।
13: कलियुग किराँदा भनेर आफूलाई भन्छौ अनि कृष्णलाई आफ्नो बनाउन सक्दैनौ?
14: मेरो कृष्ण धेरै भोलावाला छ, त्यसैले मलाई मिस किराँदा हो भनेर चाहिँ कसरी भनौ?
13: तिम्रो मुटुमा तिम्रो कृष्ण गढिसकेको छ, अब उसको मुटुमा तिम्रो ठाउँ बनाउने समय आजै हो।

0: बुडुह कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ लैजिदा हो
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाई न वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुईत ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना जीर्ण रोग काने ढूसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुईना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खाइना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुईत वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के ला कान में लगाइना सस्ता और महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध थे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहाँ मिलात
0: ए ओसिड हो कल से बुडू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता
1: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9884206997 9558236697 वो 9804 83697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
2: छोटो समय में धेरै संस्थामा डाक्टर इंजीनियर तथा सीए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो पेन्टागन कलेज तीन कुने काठमाडौँ

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: दाई म्याडबा कहाँ जाइ लाग्दो त
3: पेशाब लाग्ता चर्पी जाइ टुका
2: ए रुको ना त ओसिन होकल छ मै टर्च लाइट र लठ्ठी दिहेटु लेख जाओ
3: काजे चुनु लठ्ठी ओ टर्च लाइट
2: का कर रही दाई रातिक बेला बाहेर निकर पर्लसी वा टोइलेट जाइ पर्लसी जहिया फे टर्च लाइट बारख ओ लम्मा लठ्ठी लेख के न जाइ पर्था का कर कि बरखा छ्याकबा साप रहसेक थ टर्च क अजराले सापन द्या खसेक जै था ओ लठ्ठी ठ्याक ठ्याक आ सुनख साप भक्ठका
3: हो कत्रा मजा सल्ला डेली मार छोटकी छै
2: दाई हमन्ना स्कूलिक मैडम सर हुन्छ साप नुक सेना ठाउसी न्याङ पर्लसी ओ काम कर पर्लसी जहिया फेठ फोसियार भी पर्था गई ख सिखैल बाटका आम्ह छेटवा दिभा झपास अथवा ध्यान घास रलक ठाउँमा न्याङ पर्लसी लम्मा लठ्ठी लेख ठ्याक ठ्याक बजैटी न्याङ पर्था गई ख कलबाट
4: साप बर्खा छ्याकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैठ यी मौसममा आपन बस्यारामा पानी पैठना फिला कोर्से सुक्खा ठाउँको खोजीमा हुक्रा बाहिर निस्कठ
5: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्ना क्रम फे साप मानव बस्ती लग्घ आइसेक्ठ
3: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक जैठा।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: बहिनी हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
3: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
2: अच्छा ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
3: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
2: सुनो बहिनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
3: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते?
2: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
3: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
2: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है। इके साथ हैं फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
4: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है। स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए। हाँ दीदिया,
5: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 9886073370 और 9815067682।
6: ए रुका रुका रुका,
7: की भयो, किन कराएको यस्तो?
6: दाई यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे।
8: के एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
7: हो र?
6: हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
9: ओहो, आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123 हैश डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
10: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुलमा व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकायका लागि आवेदन खुला गरिएको छ।
11: हो, भर्ना खुल्यो। व्यवसाय, बैंकिङ, उद्यमशीलता, होटल व्यवस्थापन, वित्त, कानून, पर्यटन तथा कर्पोरेट नेतृत्व क्षेत्रमा भविष्य निर्माण गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
10: व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, होटल व्यवस्थापन, पर्यटन, वित्त, व्यवसाय गणित र सामान्य कानून,
11: विज्ञान संकाय, चिकित्सा इन्जिनियरिङ, प्रविधि अनुसन्धान, स्वास्थ्य विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि
10: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विज्ञान।
11: विद्यार्थीहरूले आफ्नो करियर लक्ष्य अनुसार गणित, जीव विज्ञान वा कम्प्युटर विज्ञान जस्ता विषय संयोजन छनोट गर्न पनि सक्नेछन्।
10: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड?
11: हो, सबै विषयमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरू, केस स्टडी तथा परियोजनामूलक अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण,
10: पूर्ण दिवसीय कक्षा सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता सिप विकास,
11: आधुनिक विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान तथा होटेल व्यवस्थापन प्रयोगशाला, उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कार्यशाला,
10: नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, MBBS, BHM, BITM, BBA, CA, MBS तथा अन्य व्यवस्थापन तथा विज्ञान क्षेत्रका लागि करियर परामर्श,
11: उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको सुविधा। अफिस खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। प्रवेश परीक्षा 2083 जेष्ठ 15 गते, समय बिहान 10 बजे। कक्षा सञ्चालन 2083 असार 1 गतेदेखि। थप जानकारीका लागि
10: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल, पासाङ लामु रोड, नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081-532-607-530-602।
12: यो कृष्ण सार FM
13: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: सम्पन्नका दसाई खतरनाक नि रहत। समयमा जो उपचार कराइसेक लसे बिखा सम्पन्नका कातल मनयाहना फे बचाइसेक जिठा। सपवा कटलक मनयाहना झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्रमा पुगाइसेक लसे ओहिहना भारी क्षति हुइनासे जोगाइसेक जिठा।
1: विश्वास लग्नाओ सही जानकारी पाइक लाग लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snackbite.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक जिठा।
2: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
3: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्यज्योति सही प्लान
4: सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

0: sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: सुन्नु न सावित्रीजी, मलाई सोफा, दराज, डाइनिङ लगायत अफिसको सामान किन्न जानुपर्ने थियो। कहाँ जाने होला?
3: ए हो र, यसको लागि तपाईँले चिन्ता लिनै पर्दैन। यदि तपाईँ नेपालगञ्जमा आफ्नो घर, अफिस वा पसलका लागि गुणस्तरीय फर्निचर खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको सही गन्तव्य हो अर्बन फर्निचर एन्ड फर्निसिङ हब प्राइभेट लिमिटेड, जुन नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडमा रहेको छ।
2: ए हो र, त्यहाँ अर्डर अनुसार मैले भनेका सबै कुरा पाउँछ त?
3: पाउँछ नि, किन नपाउनु? त्यहाँ अर्डर अनुसार बेड, सोफा, डाइनिङ टेबल, अफिस टेबल, ड्रेसिङ टेबल, दराज लगायत सम्पूर्ण फर्निचर उपलब्ध छ। टिकाउ सामग्री, आकर्षक डिजाइन र उत्कृष्ट फिनिसिङका साथ उत्पादन गरिन्छ। एकपटक अवश्य भेट्नुहोस्, तपाईँ निराश हुनुहुने छैन। हजुर, अर्बन फर्निचर एन्ड फर्निसिङ हब प्राइभेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 98448-87535 र 98082-54037।
4: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
5: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा है मर्यादित बनाई उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
4: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
5: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी।
4: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
5: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा।
4: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके।
6: लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
7: हो र? हो नि, एन्सेलमा अब मात्र 799 मै सबै अनलिमिटेड।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

सम्बद्ध हुए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।

0: Koyle Pony'a Extreme Energy Drink.
1: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ति रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध भे करा जाए जस्ते BTE, CIC, RIC जैसी मेसिन फिर वहाँ मिला
1: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही टा
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848 2697 9858 2697 वो 9800143697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
3: छोटो समय में धेरै संस्थामा डाक्टर इंजीनियर तथा सीए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो पेन्टागन कलेज तीनकुने काठमाडौँ
4: के तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई प्र्याक्टिकल एजुकेसनसँग जोड्न चाहनुहुन्छ यदि त्यसो हो भने अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुलमा अब कक्षा 11 होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि भर्ना खुलिसकेको छ यहाँ विद्यार्थीहरूले केवल किताबबाट मात्र होइन व्यवहारिक अभ्यास मार्फत पनि सिक्ने अवसर पाउँछन् मोडर्न किचन प्र्याक्टिकल हस्पिटालिटी ट्रेनिङ स्किल्ड टिचर्स एन्ड डिसिप्लिन्ड लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट अब एकै ठाउँमा
5: आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ त्यसैले अरुणोदयले विद्यार्थीलाई विश्व स्तरको प्र्याक्टिकल एजुकेसन प्रदान गर्दै आइरहेको छ
4: यदि तपाईँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा सफल करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस् सिट सीमित छन् अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुल खजुराचार बाके सम्पर्क नम्बर 081-560-143 र 98-580-20-819
5: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ
4: नेपालगञ्जको बीपी चोकमा अवस्थित GBN सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण GBN अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ
5: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् GBN सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज
4: शिक्षा र सफलताको पर्याय GBN सेकेन्डरी स्कुल सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570
6: खुसीके खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पतालम रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से OPD सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
2: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूती व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा
6: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे
1: ओ और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराई
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कू डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 वो 98-482-80-465।
5: भर्ना खुल्यो
4: होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 भर्ना खुल्यो।
7: हजुर, कम्प्युटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल म्यानेजमेन्ट संकायमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ।
4: नेपालगञ्जमा विगत 21 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
5: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
4: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको छ है।
5: होप इन्टरनेशनल एकेडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
4: थप जानकारीका लागि
5: सम्पर्क नम्बर 081-551-462 98-580-24-462 98-580-20-645 ठेगाना होटल रोयल बाँकेको पूर्वतिर नेपालगञ्ज बाँके।
8: निसन्तानपन सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर नेपालगञ्जमा यही आउँदो 2083 जेठ 23 गते शनिबार शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक काठमाडौँ र मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक प्राली नेपालगञ्जको संयुक्त आयोजनामा निसन्तानपन सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर प्रियङ्का त्रिपाठी इन्फर्टिलिटी आइबिएफ एक्सपर्ट सहित शुभश्री आइबिएफको टिमबाट निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने भएकोले सेवा लिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रदान गरिने सेवाहरू ओपिडी निशुल्क, अल्ट्रासाउन्ड निशुल्क, वीर्य परीक्षण निशुल्क, ल्याब परीक्षणमा 15% छोट। स्थान मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक प्राली नेपालगञ्ज 10 बाँके सदर लाइन टाङा स्ट्यान्ड नजिक। नाम दत्ता तथा अन्य जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98-61-14-16-99।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: lip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: मुन्तारा इङ्ग्लिस मिडियम हाई स्कुल नेपालगञ्ज बीच राजामा नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 का लागि भर्ना खुल्यो। वैशाख 8 गते हुने प्रवेश परीक्षामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः 75%, 50% र 25% छात्रवृत्तिको सुविधा छ। आजै सहभागी हुनुहोस्। विशेषताहरू: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक टोली भएको, प्रविधि मैत्री शिक्षा, साइन्स र म्याथ ल्याब, बाल मैत्री वातावरण भएको, अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड, सुरक्षित र अनुशासित वातावरण भएको। आजै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्।
3: सम्पर्क फोन नम्बर 98 84 46 291।
2: मुन्तारा इङ्ग्लिस मिडियम हाई स्कुल नेपालगञ्ज बिस राजा।
4: भर्ना खुल्यो।
5: होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 भर्ना खुल्यो।
4: हजुर, कम्प्युटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल म्यानेजमेन्ट संकायमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ।
5: नेपालगञ्जमा विगत 21 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
6: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
5: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको
6: होप इन्टरनेशनल एकेडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
5: थप जानकारीका लागि
6: सम्पर्क नम्बर 081-551-462, 98-580-24-462, 98-580-20-645। ठेगाना होटल रोयल बाँकेको पूर्वतिर, नेपालगञ्ज बाँके।
7: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
8: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
8: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
8: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
8: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
8: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
7: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथन जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
8: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-281-536-465, 98-239।

0: दवाई करत हैं। साथन कान कम सुने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
0: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दर मत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98480-2697 98580-2697 और 98014-83697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है कहाँ जाई तो ठीक रही तनी बताए दियो हमका
4: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है उके साथन टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जाते है
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है
4: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437

0: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
1: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-30479 र 98480-21380।
2: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारो भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
3: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जात है। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़ती स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
2: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ हैं शारीरिक अपांगता होए से भी बची सका जात है।
3: जानकारी रहक चाहिए। कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बांके द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98583-697 और 98014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
1: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है तो?
1: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
0: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जाई थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
1: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98239-80665 और 98482-80465।
2: बैक टू बैक, बैक टू बैक। हिंदी सॉन्ग ऑन। स्टे ट्यून्ड।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: भूमिका खेल्दै आएका छन्। तर असुरक्षित भूमि अधिकार, सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व र जलवायु परिवर्तनको असमान असर अझै उनीहरूका प्रमुख चुनौती बनिरहेका छन्। उज्यालो रेडियो नेटवर्क र उज्यालो अनलाइन मार्फत एकसाथ प्रसारण भइरहेको दिउँसो 3 बजेको नेपाल खबरमा चार भन्ज्याङभित्रका खबरसहित थप खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्यज्योति सही प्लान,
2: सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
3: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
4: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावत रहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
4: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
3: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
4: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कैके कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
1: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कर सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
2: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय केंद्र प्रयोगशाला निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाता है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9814483697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर इन्जिनियर तथा सिए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो। पेन्टागन कलेज तीनकुने काठमाडौँ।
4: सूचना सूचना सूचना स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।
5: विश्व थायराइड दिवस को उपलक्ष्यमा वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डाक्टर अल्ताबन राही द्वारा थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श सेवा हुन गइरहेको जानकारी गराइन्छ।
4: हजुर, थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा संपूर्ण सेवाहरू मात्र ₹500
5: डाक्टर अल्ताबन राही MD इंटरनल मेडिसिन TU एंडोक्राइनोलॉजी दिल्ली वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट NMC नंबर 11504।
4: संपर्क ठेगाना सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली BP चोक नेपालगंज। संपर्क नंबर 0185138060, 0185138061 र मोबाइल नंबर 9858448061। मिति 2083 ZZ23 गते, समय बिहान 8 बजे देखि 3 बजे सम्म। सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली बिबिचोक नेपालगञ्जमा आजै नाम दर्ता गरी ढुक्क हुनुहोस्। सम्पूर्ण सेवाहरू मात्र 500 लिन नभुल्नुहोला।
6: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
7: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
8: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 0184140007 र 98482363389।

0: रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
1: सुनो बहिनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
1: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5-31000।
3: सूचना सूचना सूचना, स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।
4: विश्व थायराइड दिवस को उपलक्ष्य में वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डाक्टर अल्तावन राही द्वारा थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श सेवा होने गई जानकारी कराइन्छ।
3: हजुर, थायराइड संबंधी जांच तथा परामर्श, विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा संपूर्ण सेवाहरू मात्र ₹500 मा।
4: डाक्टर अल्तावन राही, MD इंटरनल मेडिसिन, TU एंडोक्राइनोलॉजी, दिल्ली, वरिष्ठ फिजिशियन एवं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, NMC नंबर 11504।
3: संपर्क ठेगाना सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली, BP चोक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 081-5-31-860, 081-5-31-861 र मोबाइल नंबर 98-584-861। मिति 2083 ZS गते, समय बिहान 8 बजे देखि 3 बजे सम्म। सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली, बीबी चोक, नेपालगंज में आज नाम दर्ता गरी ढुक्क हुनुहोस्। संपूर्ण सेवाहरू मात्र 500 मा लिन नभुल्नु होला।
5: हैन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
6: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुस् त, पूर्वपट्टि।
7: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घन्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घन्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
8: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर, बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-4-14-007 र 98-4-82-63-399।
9: दैनिक ₹197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
10: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
3: पश्चिम नेपालकै शैक्षिक केन्द्र नेपालगञ्जमा तपाईँका सपनाहरूलाई साकार पार्ने प्रतिष्ठित नाम हो मोडर्न पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल। अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराइने यस विद्यालयमा कक्षा 11 विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुन संकायमा भर्ना खुलिसकेको छ।
11: गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट मार्गदर्शनका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 081-5-31-359, 98-5-42-666 र 98-5-54-488।
3: मोडर्न पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल, शीतलनगर, नेपालगञ्ज, बाँकी।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजे को छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: ओहो दाई कता जाँदै हुनुहुन्छ?
1: हिजो आज के भयो बहिनी? कहिले पखाला लाग्छ, दिसा गर्दा रगत आउँछ, मलद्वारमा घाउ, दिसा गर्दा दुख्ने, चिलाउने, रगत देखा पर्ने समस्या भएको छ, त्यही चेक गर्न जाँदैछु। बरु कतातिर राम्रो होला?
0: मा पार्वती आयुर्वेद क्लिनिक जानुस् न, त्यहाँ त नयाँ प्रविधि आयुर्वेदिक सार सूत्र विधिद्वारा जरैदेखि उपचार गरिन्छ नि।
2: हजुर, यदि तपाईँलाई पनि यस्तो समस्या छ भने बवासिर, एनालफिसर अथवा फगन्दर जस्तो रोगहरूबाट ग्रसित भइसक्नु भएको हुन सक्छ। यी समस्याहरूलाई नलुकाई रोगबाट सधैँका लागि छुटकारा, दैनिक कामकाज गर्न अप्ठ्यारो नहुने र कुनै प्रकारको जोखिम र अस्पतालमा भर्ना नहुनु पर्ने गरी जोर्नी दुख्ने वा वात सम्बन्धी रोग, मृगौलाको पत्थरी, महिलाहरूमा हुने विभिन्न प्रकारको रोग तथा पाठेघर सम्बन्धी रोग, मधुमेह, सुगर रोग, आन्द्रा तथा पेट सम्बन्धी रोग, छाला सम्बन्धी रोग, पुरुषमा हुने यौन क्षमतामा कमी, कलेजो सम्बन्धी रोग, अनुहारमा हुने डन्डीफोर जस्तो रोग र पुरानो पेटको अल्सर तथा अन्य रोगहरूको उपचार सफलताको साथ गरिन्छ।
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म, साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म।
2: म पार्वती आयुर्वेद क्लिनिक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, नेपालगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 98480 27590 र 081534328।
4: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध।
5: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
4: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसाय के नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
5: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी।
4: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढ़ाई हो बढ़ाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्य लाग प्रयास करी वो कराई।
5: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा।
4: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके।

0: बद्ध हुए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
2: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
1: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
2: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्स को सुविधा पनि।
1: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
2: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसा को यात्रा। संपर्क नंबर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसा को यात्रा।
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
5: सर्पदंश अथवा सापनक कटाइमसे बाँच हो सापनक कटाइमसे हुइसेक्ना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विषयमा आम सञ्चार अन्तर्क्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश नमस्कार सर्पदंश से हुइसेक्ना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध जनचेतना जगैना उद्देश्य लेलक अन्तर्क्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन सन्देशमा अपनह स्वागत बा मै पुष्पा रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशका आजुक श्रृङ्खलामा हाम्रा विज्ञ व्यक्ति हुकनसे अन्तर्क्रियात्मक छलफल गर्ने बाटी आजुक यी कार्यक्रममा हाम्रा साँप कट्टीकी काकर्ना कहाँ जैना कना विषयमा छलफल गर्ने बाटी सँग नेपालमा सर्पदंश सबसे मुख्य समस्या का हो सर्पदंश न्यूनीकरण कसी गर सेक जाई ओ काठमाडौँमा डेक पर्लक सर्पदंश समस्या कसी मेरी बा ऊ समस्या तराई से कसी ग छुट्ट मेरी बा कना बुझ्नक सँग सर्प दंश रोकथामका लागि रोटरी जनचेतनामूलक अभियान सहित विस्तृत परिचर्चा गर्ने बाटी यी बाहेक सर्पदंश सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम स्वास्थ्य कर्मी हुनका लागि का गर आवश्यक बा कना विषयमा फेर आज यी कार्यक्रममा बातचित गर्ने बाटी आई कार्यक्रमक सुरुवात गरी हाम्रो विज्ञ व्यक्तित्व हुनक पूरा परिचय से
6: नमस्ते म डाक्टर मिलन बजाचारी हाल सुकुरास ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट फिजिसियनको रूपमा कार्यरत छु नेपालको लागि नेसनल स्नेक बाइट ट्रेनरको रूपमा पनि विभिन्न स्थानहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिने कार्यमा पनि इन्भल्भ छु
7: नमस्ते म डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य हाल कार्यरत म चाहिँ राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर न्याम्स काठमाडौँमा
8: नमस्कार म तीर्थराज पौडेल बारबर्दिया नगर अस्पतालको अहिलेको अध्यक्ष म चाहिँ विशेष गरी अलि बढी सामाजिक क्षेत्रमै काम गर्छु
5: आजको छलफलको सुरुवात डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यूसँग गर्न चाहन्छु साँप कट्टीकी का कर्ना ओ कहाँ जैना कना विषयमा बताइदिन डाक्टर साहब
7: धन्यवाद प्रश्नको लागि पहिला सर्प दंशबाट मरिन्छ भन्ने खालको
9: धन्यवाद प्रश्नको लागि पहिला सापन कटाइमसे मुजा जै ठाकना मेरक डरले बिरम्या ओ बिरमेन क मने अकटाखन स्याकलसम झट्टै एम्बुलेन्स अथवा औरो साधनको प्रयोग कैख अस्पतालसम्म होइन एक ठो बगाल बाकलसे औरो बगाल कल गाउँघर हो पुरान चलन अनुसार फुक्ना मन्टर गर्न असिन मेरिक पनि नठे जैना ओ उहाँ जाख बिखास पकाटल रहेछ ओ बिस सहर गेल रहेछ कलसे अन्तिम अवस्थामा लास्टमा बल्ल रिफर हो क होइन दुई मेरिक डेकिबा ऊ मध्य गुरुवनेठे जाखन फुकैन मनै अन्तिम अवस्थामा ऐना भइल कोर्से कटरापै अवस्थामा हुकन बचाई से गर्ने रह यी मै भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा काम गरेर गेलक दुईठो समूह होइन
7: यो चाहिँ भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा काम गर्दाखेरि भेटेका दुईटा खालका ग्रुपहरू हुन्
6: कस्ता कस्ता विखाल सर्पले
10: डाक्टर साहब किसिन किसिन विषा साँप कटले से कत्रा समयमा उपचार केन्द्रमा पुगाइसकले से बचाइसक जिठा
7: नेपालको तराई रिजन र कतिपय भित्री मधेसहरूको जिल्लाहरूमा चाहिँ
9: नेपालका तराई क्षेत्र हो कटरापय भित्री मधेसका जिल्लामा गरेचा प्रजातिक साँप हो डोमिनिया प्रजातिक साँप काठ मनिनक ज्यान जैन करल ओहिमा फेरि डोमिनिया अथवा कोब्रा जातिक साँप काटल कलसे वाकर बिस शरीरमा झट्ट फैल्ख बेरमेनक मांसपेसी होइन शिथिल बनिना करबेर सास फेर निसेक मनिनक न कट ऊ चाहिँ आधा घन्टा से लेख दुई घन्टा भित्र हे जो बेरमिया उपचार नेपाल कलसे मृत न करल बा उसै क स्याकलसम्म झट्टै उपचार केन्द्रमा पुगेकला हाम्रो सल्लाह डिठी कलसे गरेचा कटले चाहिँ ढिल खबिस लग्न ओ स्नायु मांसपेशी पक्षघात हुन भइलको से छ घन्टा भित्र ल्यान सेक्लसे फे बेरमेन बचाइसकिन काटल सप कौन सप हो कि चिन्स्याकल कलसे यी डोमिनिया काटल पिखन चिन्स्याकल कलसे झट्ट जाए नै त कटरापय अवस्थामा काटल सप नि देख जाए ओसिन अवस्थामा गरेटा काटल कि डोमिनिया काटल कैखन थाहा नि पाइल अवस्थामा जत्रा स्याकल झट्ट हे पुगाइल मजा
7: खानामा हुँदाखेरि जति सक्दो छिटो पुर्याएको राम्रो
5: सर्पदंश वा कौन बेरम्या आफ्नै आइल कलसे उहिन सप कटलक हो कैख आफ्नो कसीको पत्ता लगाइ थिए
7: वास्तवमा हामी यति धेरै
9: वास्तवमा हाम्रो अट्टाढ्यो आदिम अवस्थामा बाटी कि नितान्त लक्षण निद्याखरसम्म हाम्रो असै लागा पठा सपवा डसल हो कि नहीं कि अथवा बिरामीन कहल में विश्वास कर पठा यी जमाना में फिर हमारा रेकर्ड जांच कि खन या स्कैन कि ख ई सबो काटलो हो कह पता लगे ना हमारे ठे उ प्रविधि हो ज्ञान नहीं हो जबकि उ ज्ञान प्रविधि विकसित देश में ऑस्ट्रेलिया में आस्याकल अमेरिका में आस्याकल इवन श्रीलंका में फिर वाकर परीक्षण हुई जीवा तर हमार में चाहे बिरामीन का लक्षण हेरल सकल हमारा ई सबो काटलो हो कि खन आश्वस्त हुई थी
7: आश्वस्त हो
9: जो हाम्रो औषधि चलिना निचलिना कडाबाट सुरु गरिरछी हाम्रो सशंकित मनस्थितिमा चाहिँ बैठा परल काकर कि साँप कट्ना सिजन फरक रठा साँप कट्ना ठाउँ फरक रठा साँप कट्ना सिजनमा प्रारम्भिक रूपमा ओसिन लक्षण देखपटिकी ढिल निकैका हाम्रो उपचार सुरु गर्नुपर्छ
10: मिलनजी ठेआइटवर सुगम क्षेत्र अभिन काठमाडौँमा फे विशाह साप निपाजित गर्न बाटेमा अपनक अनुभव कैसिन भा कैसिन मेरी केसेज आइट
11: अब हाम्रो काठमाडौँको कन्टेक्स्ट
12: अब हाम्रो काठमाडौँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्राय आइना कलक चाहिँ बिस निहुला कहा बेफे हेमोटोक्सिन कठी हाम्रा जेहीले रगत हाना असर गर्न हुइठा रगत जम्ना जौन क्षमता रठा ऊ रगत जम्ना क्षमता हाना जो फरक पर्न रठा विशेष कैका चलन चल्टिक भाषामा कहाबेर हरियो या हर्रो कह जाइट ओ दोसर अन्डो कहेका दुई किसिमका अङ्ग्रेजीमा माउन्टेन पिट भाइपर ओ ग्रीन पिट भाइपर एकर दसाईका कारणले औया रठा ऊ काटी काटी फेर यी ठाउँमा विशा साँप निहुइट फे कहा निसेक जाइट काकर कि यहाँ फे कतिपय ठाउँमा किङ कोप्रा फे कतिपय ठाउँमा रेस्क्यु कर्लक फे भेज जैठा विशेष कहेका काभ्रेठली दक्षिण कालीटा यहाँकनका बास स्थान जो हुइठा ओ गोकर्णामा फे दुई तिन ठो साँपनके ठाँट भेट गिल्बा ओ कतिपय ठाउँमा हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट फे हुईटीबा ट्रांसपोर्ट के कारण लंबा हुई पाइप में बैठ के फे विशा सांप तराई से अलग देख जैठा कतरपय ठाउँमा हमार सांप रेस्क्यू करना टीम या सांप रेस्क्यू करना मनाइन से बाट बटवाई बेर इवन सात डोबाटो क्षेत्र में से गोमन प्रजातिक सांप रेस्क्यू करलक अवस्था में बा वही ले करबेर कालिक दिन में न्याय कहा निसेक जैठ ओ मोर अनुभव में फे ये वर्ष मिलमची से डोमानिया सांप में दसाई से प्रभावित हुईलक एक जना मनाई अस्पताल में आयल रहा तर भाग्यवश उहाँ ड्राई बाइट अथवा सुक्खा कटाई रहलन आउर बुझा पर्न बाट का हो कलसे सक्कु साँप विषाह निराट ओ विषाह साँप फे पुनः रूपले बिष निछोरल अवस्थामा हुइसेक था ओ पुनः रूपमा बिष छोरल रहलसे फेर ओकर उपचार सम्भव बा पुनः रूपले बिष निछोरलक कारण सक्कु कटाई हुइल हाम्रा एन्टी स्नेक भेनम जौन सर्पडांसा विरुद्धक बिरुवा निचलैली हाम्रा हेर्ली 24 घण्टा सम्म फे कौनो लक्षण नियैलक कारण हाम्रा उहाँ आना डिस्चार्ज गर्ली उहाँ सपहना जो बोखा आयल रला
10: मार्ख नल्ल रला कि
12: मार्खना नहीं कि डाँट टुर्खना बुवारामा जकाका ल्यानल रला ओर से ओहेना व्यवस्थापन फे कर परल ओकर लाग यहाँ साँप रेस्क्यू करना भाई हुकर बाटा वहाँकन सम्पर्क कैखा सपोहना फे रेस्क्यू करली
6: सर्पलाई पनि रेस्क्यू गरे
13: यो तराईमा हुने
5: यी तराईमा होइना सर्पदंश सम्बन्धी अथवा साँप ढ्युर ऐना केसेज हो काठमाडौँमा ऐना स्पेसिफिक केसेजमा का फरक पाइल बाटी आफ्नो अनुभव सुनादिन
6: अब हाम्रोमा चाहिँ प्राय जुन चाहिँ मैले सुरुवात
12: अब हाम्रोमा चाहिँ प्राय जौनमै पहिले फेकानु जे हेमलोटोक्सिस जौन रगत जम्नामा ऊ अप्ठ्यारो बनाइन कर्था यहीमा चाहिँ खास ओसिन ढ्युर पिट भाइपरका कटाईमा मृत्यु दर कम बा मोर गैलक तीन वर्षका अनुभवमा जेकर पहिले से दीर्घ रोग रहलन प्याटिक अल्सर रहलन लम्बा समय से आउर मेरमेरिक रोग रहल बुढाल मनाइन का मृत्यु दर हुई बाटन तर युवाहुकन के केस में चाहे खास रगत पाटीर बनाइठा वही आना हमरे कुछ समय सम्म हेर्थी
10: उका विषय कारण ले हो
12: बिसले फे बिसले रगत पाटीर बनाइठा नाई तर रक्त श्राप नी हुईट ये बात बटवाई बेर हमरा नवल परासी ओर त्रिवेणी ओर रसेल भाइपर का ना फे भेज जैठा प्राय वो रसेल भाइपर ना चाहे बर्सिन पाइठन या अजिंगर कैखा पकड़ना फे कई जैठा उसे देखा पर्ना रसेल भाइपर हो कि अजिंगर हो कहका ओकर फुनका हेयर का फे छुट्याइसेक जाइट जे फुनका हेयर का फे छुट्याइसेक जाइट जे बगुवाका फुनका

0: हमार कन्टेस्टमा हमार पहाडी क्षेत्रमा जहाँ प्राय रगतमा आसार पर्न जौन बीस रठा ऊ बीस चाहिँ ग्रीन पिट भाइपर ओ मिनी पिट भाइपर का हुइना कारणले कहाबेर हाम्रा सर्पदंशक विरुद्धमा चलाइना बिरुवा हाम्रा नि चलैठी तर उहो बाट नम्बल परासीमा बा कलासे काकराकी उहाँ रसेल भाइपरबाट उहाँ पपुलेसन देखा परल बा ओहिले करेबेर ओसिन मेरिक बिरेममा आयल कलासे सम्पू चिना निसे गिल हो कलासे ओसिन ठाउँमा सर्पदंश विरुद्धमा देजिना हमार्थे रहना जौन एन्टी स्नेक भेनम बा ऊ देहे पर्ना हुई सेक्ठा
1: एन्टी स्नेक भेनम छ त्यो चाहिँ दिनु पनि हुन सक्छ
2: हजुर डाक्टर कृष्णलाई योसँग सम्बन्धित कुरा
3: हजुर डाक्टर कृष्ण हन यही से सम्बन्धित बात पुछ तु सबको हन मारी डर्न नि हुइटकन बाट वही से जोरख अपनक ठे डाक्टर मिलन अब सुनै लग अस वैसिन अचम्म लगती चाख लगती कौनो केस बा अपना सर्पदंश कर्ण कर मैलक
4: एउटा घटना के थियो भने
5: एक ठो घटना कारह कलसे बाह्र बर्दियामा एक ठो महिला मनै हन राटख सुत्नासी अघारिए जो दस बजे हो सप कटल काटसेक पास हुक्रो वटा चासो निलेल जौन सप कटल रह वही हन छोपखन एक ठो जालम ढरल दोस्रो हुक्र गुरोकोर लगल गुरोकोर गेलक पाछ बिना मेहन बीस चहटी गेलन हुक्र बिहान हो गेल धीरे अस्पतालमा अइल धीरे अस्पतालमा आइबेर हुक्र उ सपुह फे लेक आइल रह सपुह भर जिटिए रह मने यहाँ ओरा सके हुक्र प्राथमिकीकरण कर निसाकल वर्षे उ घटना बडा विडम्बनापूर्ण लागल
3: ओ सपुह न मारी डारे त नि हुइट
5: मारी डारे त नि हुइट इकोलोजिकल पॉइंट अफ भ्यू को हिसाबले मार नि हुइट ओ हुकनक एक ठो विश्वास काबाटन कलसे सपुह न मरलसे अपनो फे मुजा जेठा कना विश्वास थारू समुदायमा रहल कोसे हुक्र नै मनरे वकर पाछ उ सपुहन हमरा उद्धारकर्ता हमको बोला के पठेली हमरो वन कार्यालयमा दोस्रो मनिया ओरागिल के हमरो निश्चित करली त लहास लेख हमको घर गेलक पाछ उहाँ को गुरुवा नै सपोर्ट ल्यान पर्था उ सपुहन ल्यानलासे मै ठीक पार्यम कहिखन कल रहेछ असी क मनिनको विश्वास न स्वास्थ्य शिक्षाले कन्भिन्स गर्न निसेकल पर्से असिन घटना घटना रहेछ
4: कन्भिन्स गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ कतिपय घटनाहरू चाहिँ हुँदा रहेछ
6: डॉक्टर आचार्यलाई
7: डॉक्टर आचार्य हेन एक ठो प्रश्न सप काट सेक्ला पाछ उ भिक्टिम हन जे हेन काटल बा उ मनै हेन उपचार केन्द्रमा ल्यान बेर कौन कौन विधि या कौन कौन उपाय अपनाइ पर्था वकर विषयमा डान्चे विस्तृत रूपमा जनादिन
4: पहिला कुरा त जुन स्वाभाविक
5: पहिला बाट सप काटल कलसे अक्टेना भागदौड गर्न मेरी बाट होइन असी निकर हाम्रो सुझाव लिछ काकरा कलसे जट्रा जट्रा अक्टा गेल जट्रा दौड ढुक कर गेल ओट्रहे काटल ठाउँमा से विष फैलठा रक्त संचार बहना वर्षे उ फैलठा उ अपने सकुजाट कर सेकना हुए फे संगरेन का सहयोग लेख साइकल मोटरसाइकल अपने चलाई सेकना फे संगरेन चलाइक खन गाड़ी एम्बुलेंस मौर जहन चलाइक ख ऊ मार्फत उपचार केन्द्र समझाई पड़ा काटल ठाव से पास बांधा पठाओ काटल ठाव चीर पठा के खन पुरान पाठ्यक्रम में पढ़ा जाए ऊ चाह कर निभित ऊ करबेर समय घट्टी जिठाओ कबुकाल काटल ठाव में से काटाबेर ओ बांधाबेर ठप छेटी हुईना वर्षे ऊ निकर हमारा सुझाव दी करपना का हो कलसे और जनक सहायता ले सैकल सम धटने उपचार केन्द्र सम आई पड़ ऊ काटल ठाउँ हुन स्याकल सब निचला खन जसिकन हाम्रा हाट गोरा टुटल मसे टट्री भन्न एक ठो कठो मन अर्याख स्प्रिटिङ गर्न कठी ऊ कैखन केल ल्यान हाम्रा सुझाव
0: स्वास्थ्य कर्मी डाक्टर हुक्र जे चाहिँ सर्पदंश प्रभावित क्षेत्रमा बाट उहाँ लाग कैखबा ओ हाम्रा स्याकल सम चाहिँ सर्पदंश प्रभावित क्षेत्रमा जाखा विशेष कैका स्वास्थ्य कर्मी ओ डाक्टर साहब हुकन लाग चलाइना होइठा फेर दोस्रो बाट अपनाहना कैदारू यी विषयमा ढ्योर ज्ञान त नि हो कतिपय डाक्टर साहब हुक्रा हमार मेडिकल अफिसर हुकन ट्रेनिङ डेटी रठा उ आधारमा हुक्रा प्रशिक्षित हुइठा कबुकाल हमार बडा डाक्टर साहब हुक्रन से फे विवाद हुइठा काकरा कि आब रगत पाटी देखा परल बा सर्पडंशा बा काकरा सर्पडंशा विरुद्ध औषधि नि देगेल हो कैका तुहार सिनियर कन्सल्टेन्ट के हो वहाँ से बात करब कना जैसिन बात हुइठा काकरा कि हमरा शुरू से जो सर्पडंशा विरुद्ध काम करना जौन एन्टी स्नेक भेनम हो ऊ काम गर्न कलक बिग फोर हो बिग फोर मा सह स्किल भाइपर कना नेपालमा निपाजैट आउर देना कला कोब्रा कमन करेट ओ रसेल भाइपर मा केल हो ओइले करेबेर ग्रीन पिट भाइपर मा फे गैल साल हाम्रा 400 के आन्जर पान्जर केस हेर्ल रहली तर किउवा न फे एन्टी स्नेक भेनम नि देल रहली सपोर्टिङ ट्रिटमेन्ट मा ढेर मनै चोखाल रहला ऊ आधारमा कबु कबु रक्त श्राप हुइल अवस्थामा हाम्रा रगत चराइना सपोर्ट ट्रिटमेन्ट केल देली यी बात निबुझका कैयौं फेरा डाक्टरन से फे विवाद हुइना कारण ओर्से मोर विचारमा त मेडिकलमा इन्ट्रान्सिप करती रहलक भैया बाबु हुकन ऊ मेडिकल कलेजमा जाखा डिएस एक गैल कलसे वहाँ से फे ढ्योर बाट फैला सेक्ठा ज्ञान फैला सेक्ठा काकर कि स्वास्थ्य कर्मी हुकन से फे यी ज्ञानका अभाव देखा पर्था ओर से आप बागमती प्रदेशमा फे यी हाम हमार कार्यक्रम हुइना कल्बा सर्पडंश विरुद्धमै

0: 6-7 ब्याज जत्रा मेरमेरिक स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ना स्वास्थ्य कर्मी हुकनमै यी तालिम देशेकल बाटु।
1: डाक्टर मिलन कहस मर्फे स्नेक बाइट सम्बन्धी ज्ञान MBBS करबेल फे जो कुछ ज्ञान गुणको बात थाहा हुइल ओसिन हुइला कोर्से यही न मेडिकल एजुकेशन सिस्टम मन इनकर्पोरेट निकट सम नेपाल से जत्रा फे MBBS MD ग्रेजुएट हुइठ हुकन मफे हमार निन्द अवस्था हइन ओसिन हुइला कोर्से मेडिकल काउन्सिल फे सर्वदम्स नेपालको फुरसिय मौलिक जनस्वास्थ्य समस्या हो कनाबार बुझकन कोर्से मजो अनिवार्य स्नेक बाइट म्यानेजमेन्ट सेन्टर अथवा अस्पताल एक्सपोजर हुना ठाउँमा दरबन्दी हुइल सिकेल प्राक्टिकल नलेज लिए से कहीँ कनामै लागत वाकर पासकेल स्नेक म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ दुई चार जन देख कोर्समा जो यही हेर्न समावेश गर सिकिल कलसे यहीले बडा संख्यामा सर्पदंश बिरामी नै फाइदा पुग्छन् लागत
2: भने यसले चाहिँ लार्ज स्केलमा स्नेक बाइट भिक्टिमलाई राम्रो गर्छ भन्ने लाग्छ।
3: सम्बन्धित निकाय हन कुछु कह चहबी कि
4: सर्पदंशमा देखेको सिचुएसन के छ।
0: सर्पदंशमा देखा परल अवस्था का हो कलसे मोरमा सर्पदंशक बिरामी आइल बिरामी हना उपचारका लाग मोरथे एन्टी स्नेक भेनम निहो ओ भेन्टिलेटर फे निहो कलसे मै रिफर गर्थु लक्षण देखा परलाका आधारमा नै कर्नाटक कठी फलाना अस्पतालमा जाई कैखा तर बिरामी अचेतमा परल बेला अलमलमा परसेक्ठा अथवा रिफर गर्ना मेकानिजम बलगर हुई परल यी बाट सर्पदंश बाहेक औरामा फे लागू हुई था तर सर्पदंश विशेष मानखा काकारा कि समयमा जो बिरामीहना एन्टी स्नेक भेनम देसेगिल कलसे अथवा भेन्टिलेटर करासेगिल कलसे एकर आउटकम एकदम मजाबा रिफर मेकानिजम बलगर हुई परल जस्ता कहाँ जिना काकैना हुई था ओर से नम्बर देखा हुई था कि सेकलसम स्वास्थ्य कर्मी बाटा कलसे एम्बुलेन्समा संग स्वास्थ्य कर्मी पठाका हुई था कि सेकलसम झटहा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा पुग परल एम्बुलेन्स जो चाहठा कहना नै हो चाहे ऊ मोटरसाइकल काकरा नै हो सकेसम समय खराब निकै ख समयमा झट्टै सर्पदंश उपचार केन्द्रमा पुगाई पर्थ बिरेमेन
1: रसरस आप नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिज अथवा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हुइलसे फे डान्डान नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय आँखी पर भिरलबा सर्पदंश यी खुसी बाट हो ओ आमन स्नेक बाइट फोकस कार्यक्रम नेपाल सरकार लिएका आइल कलसे फुरसे सर्पदंश से क्युफे बने निमुही।
3: अब हाम्रो सुन्तीबाटी सर्पदंश सम्बन्धी अन्तर्क्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश आज हमन्से बाटबटुटीबाट डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य डाक्टर मिलन बज्राचार्य ओ तीर्थराज पौडेल आबभर बाराबर्दिया नगर अस्पतालक अध्यक्ष तीर्थराज पौडेल से फोनमा कर्गिलक बातचितको अंश प्रस्तुत गर्न चाहटु। तीर्थराजी अब नहुक्र उहाँ सर्पदंश सम्बन्धी कसिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ती बाटी जनादिन
5: हाम्रोमा पहिले त्यो सिस्टम
6: पहिला हाम्रोमा ओसिन सिस्टम नि रहा मेडम मै कैलाक अघनमा अध्यक्ष हुनु दोस्रो यहाँका आवश्यकता तराई क्षेत्र काँचर पाँचर जंगल खोलवा रहलबा दोस्रो सर्पदंश सम्बन्धी उपचार केन्द्र धरिकना सोच लेख वाकर प्रक्रिया नेपाल सरकार स्वास्थ्य विभाग से लाइसेन्स प्रक्रिया कली त उहाँ लाइसेन्स दिला लाइसेन्स पासेकल पाछ डान्डान सामग्री ओ बिरुवा किनख हाम्रा सुरु कली सुरु करना से आघ रोटरी मसे पोस्टर प्रमोशन का सामग्री दिला रोटरी क्लब नेपालगंजमा पोर साल फे एक ठो कार्यक्रम करल रहा उ कार्यक्रममा निर्मल सर महिना फे बलैल रहा मै अपन फे रोटरी अनुहिलक कारणले फे वाकर पाछ वाकर आवश्यकता का बात फे जानकारी फिल सम्पर्क फिल उ प्रमोशनल मेटेरियल अलग पाछ हाम्रा सक्कु स्वास्थ्य चौकी ओ विद्यालय म फे उ प्रमोशनल मेटेरियल वितरण कली वाकर पाछ उपचार का लाइसेन्स ले सकल पाछ उपचार का प्रक्रिया फे शुरू हुई
3: लाइसेन्स अपन कहाँ से प्राप्त कर लिया कर
6: स्वास्थ्य मंत्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा से ऊ शाखा मा जाक हम दरखास्त दिली वहाँ आक हमार अस्पताल का अवस्था हेल तो वहाँ ली अपने हुकन का अस्पताल का अवस्था ठीक बाकै ख देला लाइसेन्स ले साकल पाछ हमरा नेपालगंज से वहाकर विज्ञ डाक्टर हुकन ल्यान ख तालिम चलैली हमार डाक्टर हुकन हमार प्यारामेडिक्स हुकन तालिम चला कर साकल पाछ हमार शुरू हुई
3: वो और एक ठो बात फिर जनादिन अपने सर्पदंश सम्बन्धी उपचार केन्द्र खोल सकली याकर प्रक्रिया बाट फे बटुवा सेक्ली सर्पदंश सम्बन्धी पीडित मनन उपचार गर्ना क्रम मध्ये पर्ला अप्ठ्यारो परल पक्ष का हो याकर
6: जस्ट हमार्थे करिब करिब 27-28 ठो केस रिपोर्ट हुइल उ रिपोर्टेड हुइलाकु केस मध्ये एक ठो फे केसमा मृत्यु नि हुइल यहाँ आइलक केसमा ओहिमा विषहसाप नि काटल फे हुइसक्था अथवा सामान्य उपचार होक चुमर हुइलक फे हुइसक्था अथवा हाम्रो यहाँ से रिफर घटना समय पहिले तर तीन जना जठ्याक दुर्घटना हुई हमार पालिकामा उ तीन जना हमारमा रिपोर्टेड जो नि रिपोर्टेड निहोक हुक्रा कहाँ गैला त कहबेर कुरुवक ठे गैला कुरुवक ठे सेलेन्ना बेला ढिलो स्याकल रह उह वर्षे तीन ठो चार ठो जठ्याक ओसिन केस सुन्नामा आइलबा जोन मनै हमार अस्पतालमा नि पुलक्र उह वर्षे सचेतना जगैना काम बढाइ परल कना जसिन लागत महिना
3: अपना हुकना उहाँ सर्पदंश सम्बन्धी धिर के सैठा वाकर आवश्यकता बुझक अपना हुकरा सर्पदंश उपचार केन्द्र खोल्ला निर्णय करली ई प्रक्रिया करबेर अपना हुकन कहाँ थे टनी करना परल ई प्रक्रिया करबेर कतरा समय लागल जान्छे जनाडीना अपना कवि कलशे अष्ट आवश्यक रहल ठाउँमा सर्पदंश केन्द्र खोलकला का कर परट कैख जानकारी पाइसे कही
6: सबसे पहिला त याकर आवश्यकता बा कना आधारमा खोल्ना हो तराईमा ढिउ ठाउँमा आवश्यकता देख पर्था ओकरा पाछ सामान्य याकर पूर्वाधार हुई परल जस्ता सामान्य हेल्प पोस्टमा धर्ना टनिक करा परी सबको सेटअप फिल ठाउँमा यहाँका अवस्थामा कहबेर लाइसेन्स सहज तरिकाले देना रहेछ लाइसेन्स दे साकल पाछ यहाँ जस्ता कावासोतीमा डाक्टर छ बिलालबाट नेपालगंजमाबाट डाक्टर साफुक्र ऊ तालिम चला देठ कबु कबु का हुइठा कलसे दुई तीन महिनामा स्टाफुक र चेन्ज फिल्ड ओसिन ब्यालामा जस्त हाम्रा पहिला हाम्रा तीन जना मेडिकल अफिसर कन तालिम दे गइल तर हुक्र आफन कारणले कोनो छात्र वृत्तिवाला रह कोनो पढाइका कारणले रह हुक्र त जैठ उहर चाहिँ आफन हरना थाई स्टाफ हुकन चे यहाँ रह हुकन तालिममा टनिक जोर देह पर्था ओ हाम्रा डाक्टर हुकन प्र्याक्टिकल अनुभव हुन कैख हाम्रा सात आठ दिनका लाग पर अस्पताल जस्त फेरि अस्पतालमा हाम्रा समय समयमा पठाइति रठी आमिन फे ओसिन खास करानी हो महिन करानी हुल सेटअप गर्न ब्याला अब प्रमोसनल मेटेरियलका समस्या रह रोटरी महिना ठ्युर प्रमोसनल मेटेरियल दिहाल उह वर्षे ऊ मजा खालक पोस्टर रह मै पहिला अभियान चला सेक्लर हुँ उह वर्षे फे मजा हुइल
5: पेन गरिसकेका थिए अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि राम्रै भयो
3: डाक्टर निर्मल रिजाल सर्पदंश अभियानका लागि रोटरी क्लब अफ मिड टाउन कसिन जनचेतनामूलक काम गर्टिवा जनाडिन
7: रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउन ले
8: रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउन सन् 2019 काठमाडौँमा एक ठो वृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दरला सर्पदंश विषयमा जहाँ चाहिँ विभिन्न मुलुकके विज्ञ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हुक्रे अस्ट्रेलिया से युके से भारत बांग्लादेश नेपाल सक्कु मुलुकका विज्ञ हुक्रे जुटका एक ठो सम्मेलन गर्दरली उ सम्मेलनका निचोड अन्त्यमा एक ठो निचोडका आयल कलेसे जनचेतनक अभावकै कारणले धिर मनै सर्पदंश जोखिममा पर्छ ऐसिन जनचेतना रहत कलेसे हुक्रे ऐसिन सर्पदंशक जोखिम मनसे बचेसेका सर्पदंश निहित कलेसे मृत्यु हुन सम्भावना फे कम हुने रह ऐसिन मेरिक सन्देश सहित उ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ओराइल जयकार आधारमा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउन काठमाडौँ एक ठो परियोजना निर्माण करल ऊ परियोजना चार वर्षीय अभियान के रूपमा काम हुइतिबा ऊ मध्ये मिरमिरिक जनहितमा जारी रेडियो सन्देश 11 ठो बा जौन मध्ये पाँच ठो रोकथाम हन लक्षित कैखन करागिल बा कलेसे पाँच ठो उपचार ओ ऊ मध्ये एक ठो चाहिँ साँप पर्यावरण के अभिन्न अङ्ग हुइटकन सन्देश सहितका बा कलेसे ग्यारौँ एक ठो महत्वपूर्ण सन्देश का बा कलेसे साँप काट डरलेसे का कर्न त कन एकदम महत्वपूर्ण ओहीमा कर पर्न का होट कैखन ऊ बाट ऊ सन्देश बुझैन कोसिस गर्ल बा ओस्टिहके रेडियो कार्यक्रम बा छोटी सन्देश ओ रेडियो कार्यक्रम मुलुक भरक 41 ठो एफएम रेडियोमा से प्रसारण हुन कर्था उहीमा स हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा से फे यी सक्कु सामाजिक सन्देश हन सामाजिक सञ्जालमा से फे जस्त फेसबुकमा से युट्युबमा से इन्स्टाग्राममा से फे यी सन्देश पुगाइ सेग्भिकले से विशेष कैख युवा हुक्रे जे सामाजिक सञ्जालका प्रयोग गर्था उहाँ हुक्रे जागरूक हुइसकिकन धारणा हो ओसिके पोस्टर बा पोस्टर फे दुनोर प्रिन्ट करागिल बा एकोर हाम्रो रोकथाम के सन्देश देले बाटी कलेसे एक ओर उपचार के सन्देश देले बाटी इसकको पाँच ठो भाषामा नेपालीमा टो पर्लिबा ऊ बाहेक मैथली भोजपुरी अवधि ओ पश्चिम थारू भाषामा बा अब मै लास्टमा फे एकचो सम्झाइ चाहतुम हाम्रो वेबसाइट www.snakebite.nepal.org यी वेबसाइट सर्च गर्बी कलेसे मै आघे कलक सक्कु सामग्री फे भेटाइसेक जै ऊ बाहेक सर्पदंश होख उपचार कराइ जैन एन्टी भेनम सेन्टर का फोन नम्बर यी कहाँ हो कौन ठाउँमा बा उहाँको सम्पर्क मनैया के हो यी सक्कु बात यहीमा विस्तृत रूपमा दे गइल बा ऊ वेबसाइटमा आकुर धिर चिज बा अनुसन्धान हुई न्युज पेपर अथवा पत्र पत्रिका छापा गैलक आर्टिकल हुई स्वास्थ्य मन्त्रालय हो विश्व स्वास्थ्य संगठनका सर्पदंश सम्बन्धी प्रकाश शासन इसकु बार वहाँ भेटाई सेक्जेट विद्यार्थी अनुसन्धानकर्ता हुनक लागि यी वेबसाइट महत्वपूर्ण रहन करल बा यी परियोजना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रोटरी इन्टरनेसनलको रोटरी फाउन्डेसन कनबा वाकर एक ठो ग्लोबल ग्रान्टले सम्भव भइलक हो वहाँ हुकन फे हाम्रो ढेर धन्यवाद देहटी
7: यहाँको एउटा ग्लोबल ग्रान्टले सम्भव भएको हो र उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
3: आजकी रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशमा आपन अमूल्य समय देख यी छलफलमा सहभागी हुनेलकमा हाम्रो विज्ञ हुनुप्रति हार्दिक आभार तथा ठ्यु ठ्यु धन्यवाद। आप सुनि यी जानकारी मूलक रेडियो सन्देश
9: नेपालमा पाजेना बिखा साँपनको विषयमा सुन। एक ठोर गरैचा जोन खास कैख रातिक समयमा घरभित्र पैठ सेक्ठ यी कटलसे निबठाई फे स्याकट तर कटलक पाछ देही भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्व हो सेक्ठा और रठ डोम जोन बडा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाँट फुलेठ डोम साँप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कैख सन्ध्या बिहान देख पर्छ निकर कटलसे फे लक्व हो सेक्ठा ओ और रठ कैली जाटक साँप निकर कटल कलसे कटलक भाग सुई था ओ बडा कर्रसे बठे था रकट थे पाटी रोकर रकट बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सक्कु भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रना बाधे सांप ई सांप दस लाख बिरहमेन कम केल पा दे था तर हिंकनक कटाई एकदम खतरनाक रहा।
10: बर्खा छ्याको अनाज बिग्रिना समयमा सापनको कटाई अथवा दसैँको घटना ढ्युर बिना कर्था बैया वो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनको बछ्यारा नाश हुइबेर सापनको दसैँको घटना ढ्युर बिना कर्लक पाजाइ
11: ढ्युर जसिन सापनको दसाई हानिकारक नि रहत उहो फे यदि सपवा दस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर
12: विश्वास लग्ना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाएक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सेक जिठा।
3: आजकी रेडियो कार्यक्रममा विज्ञ व्यक्ति हुकनक मार्फत सर्पदंश सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमको महत्व ओ सर्पदंश सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन करबेर काका प्रक्रिया अपनैना सँग साँप कट्टीकी ढिल निकै ख पायक पर्ना साधनमा अस्पताल वा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लैजिना आपन आँजर पाँजर साँप आइनी देखेकलाग आपन घर आँजर पाँजर सरसफाई गर्ना खेतवा डिहामा रात बिरात बाहर जाइबेर लट्ठी ओ टर्च लाइटको प्रयोग गर्ना रातक सुटबेर झुल प्रयोग गर्ना ओ साँप काटरलसे कटवा पैलक मनाइहन सासा बाँध कह पर्खा कना जानकारी पहिली कटी ऐना अठार और विज्ञ व्यक्तित्व हुकनसे कर्लक छलफल लेक ऐना बाचा कर्ती आजकी प्रस्तुतिमा से सहकर्मी सङ्घर्या हुकनक सँग मै पुष्पा फे बिदा हुइटु नमस्ते।
8: यी रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान पहुना हुक्रे बटवैलक उहाँक निजी विचार मान्जिने बा ओ नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजनाक तरफ से अभिव्यक्त हुइलक आधिकारिक विचार कैख माना निहुइ।
13: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा हो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपालका सँग बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका सँगसँग विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लब हुकन्से जनहितकला प्रस्तुत।

0: Telefonia. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्र म व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेशा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी ओ कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके।

0: सुविधा सम्पन्न बी डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरकी लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
1: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
0: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
1: फोन नम्बर 081-5323-375।
2: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
3: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिय और अंडकोष और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ हैं, कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
3: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5031-1000।
5: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
6: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सूचना, स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।
0: विश्व थाइराइड दिवसको उपलक्ष्यमा वरिष्ठ फिजिसियन एवं एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर अल्ताबन राईद्वारा थाइराइड सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श सेवा हुन गइरहेको जानकारी गराइन्छ।
1: हजुर, थाइराइड सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श, विशेषज्ञ डाक्टर परामर्श सेवा तथा सम्पूर्ण सेवाहरू मात्र रु 500 मा।
0: डाक्टर अल्ताबन राई, MD इन्टरनल मेडिसिन, TU एन्डोक्राइनोलोजी, दिल्ली। वरिष्ठ फिजिसियन एवं एन्डोक्राइनोलोजिस्ट, NMC नम्बर 11504।
1: सम्पर्क ठेगाना सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, BP चोक, नेपालगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 081531860, 081531861 र मोबाइल नम्बर 98584861। मिति 2083 जेठ 23 गते, समय बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, BP चोक, नेपालगञ्जमा। आजै नाम दर्ता गरी ढुक्क हुनुहोस्, सम्पूर्ण सेवाहरू मात्र 500 मा लिन नभुल्नुहोला।
2: नानीलाई कुन स्कुल भर्ना गर्ने होला, म त साह्रै चिन्तामा पो छु।
3: हेतरिका, किन चिन्ता लिनु भएको? हाम्रै नेपालगञ्ज 12 बेलासपुरमा न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ नि।
2: ए हो र, त्यहाँ कस्तो सुविधा छ र? उही किताब मात्रै घोकाउन त होला?
3: त्यस्तो होइन नि, त्यहाँ त डिजिटल क्लासरुम छ नि, जहाँ बालबालिकाहरूले आधुनिक प्रविधिबाट रमाइलो मान्दै सिक्छन्।
2: अनि सुरक्षाको कुरा नि, अहिलेको समयमा त डर पनि लाग्छ हौ।
3: त्यसको लागि चिन्ता लिनु पर्दैन, पुरै स्कुल परिसरभरि CCTV क्यामेराको निगरानी छ नि।
2: अनि शुल्क?
3: सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा नै यस विद्यालयको मुख्य विशेषता हो नि।
4: हाम्रा विशेषताहरू:
3: प्रविधि मैत्री शिक्षा,
2: गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ,
3: खेलकुदमा विशेष जोड,
2: शान्त र बाल मैत्री वातावरण,
3: CCTV जडान भएको सुरक्षित विद्यालय परिसर
2: र स्कुल भ्यानको सुविधा समेत छ।
3: न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, नेपालगञ्ज 12 बेलासपुर। सम्पर्क नम्बर 081537505।
5: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दे जस लागत है।
6: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है, आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
5: अच्छा, अस है तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
6: साचू दीदिया, का मिलत है हुआ?
5: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, TV रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
6: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
5: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
6: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
5: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ हैं फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
7: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए। हाँ दीदिया,
8: स्टार फर्नीचर लैंड, शिक्षा कार्यालय के सामने, BP चौक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 98680073 70 और 98195067 87 82।
9: यो कृष्ण सार FM
10: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी